0: This is Lankan Fusion with Pemi Rajapaksa.
1: Taking you back to Sri Lanka and giving you a Sri Lankan radio experience.
0: The type of music you can listen to with a perfect cup of Sri Lankan tea.
1: This is Lankan Fusion with Pemi Rajapaksa.
0: On Alive 90.5 FM.
2: You are listening to Alive 90.5.
3: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
2: www.alive905.com.au.
4: Hello there, I'm Terry Daniel. A cold front is set to lash South Australia this weekend and continue east, bringing heavy rain and potential damaging winds. Senior forecaster Chris Kent says strong wind gusts will be felt from tomorrow.
5: So once the front moves through tomorrow, morning, we will see those winds, the southwesterly winds increase on the back edge of that front. The likes of Eyre Peninsula and West Coast likely to see some pretty gusty winds, and that could extend into the Gulfs and around Adelaide during Sunday night into Monday morning.
4: Passengers at Sydney Airport are being warned to expect further delays due to a shortage of air traffic controllers. Dozens of flights were pushed back by up to 90 minutes yesterday, driven by a similar issue. The airport is warning of further disruptions, which could affect flight schedules across the network. Former pilot Richard De Crypney has told Seven there aren't enough controllers available to fill the roster.
6: There isn't enough redundancy for them to be give a resilient service. Look, air services is, if aviation was a human body, air services is like the lungs, and at the moment we're trying to run a marathon on one lung. There just aren't enough people.
4: BHP workers in Western Australia's north will strike again this weekend amid an ongoing pay dispute. Union members will refuse to load ships today before walking off the job for a 24-hour strike tomorrow morning. Electrical Trades Union Western Australian Secretary Adam Woodidge says it will show BHP the workforce is valuable.
7: With the insult of offers that they keep on putting on the table, BHP need to have a clear message sent to them from the workforce that they're not going to accept it. They want a real rates agreement.
4: Overseas, and the US Senate has confirmed former Republican Congressman David Bratt to become ambassador to Australia. The approval clears the way for him to fill the diplomatic post, which has sat empty for nearly 2 years. It means he can arrive in Canberra ahead of the 75th anniversary of the ANZUS Treaty on September 1st. And Thailand's Prime Minister is pledging to introduce new firearms laws in the wake of a deadly school shooting outside Bangkok, which killed 7 people. More than 1 million people have already filled in their census form ahead of the official day coming up next Tuesday. Emily Walter from the Bureau of Statistics says most people are going online, but there's still a paper version available.
8: If you have received a letter with a 16-digit census number and asking you to go online, that letter also contains a pathway for people to use to request a paper form, an automated paper form request service. It's 24 hours.
4: As Australia prepares for summer, new research has detailed how heat affects the mental health of young people. The risk of poor mental health outcomes increases by 25% during heat waves for those aged between 5 and 18. Flinders University's Hira Fatima says the findings highlight the need to better protect children from the heat.
9: Understanding where and when children are most exposed, who is most vulnerable, and testing practical changes in schools and communities that can actually protect their mental health.
4: This is Air News. The New Zealand Warriors have made an NRL Premiership statement in Auckland, dominating the ladder-leading Penrith Panthers 28-12. Warriors captain James Fisher-Harris says he's stoked with their performance.
10: I know they bring, like, their quality side. Have been for a long time. They're number one for a reason, but, yeah, I just thought we put a step in the right direction, as a squad and as a game.
4: In the second game, the Sydney Roosters came from behind to defeat the Canterbury Bulldogs. The Roosters held an 8-2 lead at half-time, but the Bulldogs scored 3 tries in 11 minutes to take an 18-8 lead with 25 minutes to play. But 2 quick tries in the final 15 minutes for the Roosters earned them a hard fought 20-18 win. Roosters halfback Sam Walker telling Nine he wasn't happy with their performance, even though they got the points.
11: Yeah, it was probably a disappointing performance from us. I thought we were far from our best in that game there. And credit to the boys, I thought Les coming up with a play like that towards the end of the game was huge. And it's good to be able to get the win in those sort of scrappy games, but it'll be a lot better than that if we want to do anything this year.
4: Next Thursday, it's first playing second with the Roosters up against the Penrith Panthers. In the AFL, the Brisbane Lions have humbled the Hawks, recording a 67-point win to return to the top four. The Lions victorious 18-17-125 to 8-10-58. Cricket news, and Travis Head has won a second straight Allan Border medal, pipping fellow Ashes heroes Alex Carey and Mitchell Stark. Head polled 153 votes, ahead of Carey on 152 and Stark on 150. Stark won the Shane Warne Test Player of the Year award, while Mitchell Marsh took out the One Day International award. Australian Independent Radio News.
2: Around the world.
3: Around the globe.
2: Streaming live 24/7.
3: Alive905.com.au.
12: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और आज जैसे मैंने आई डोंट नो कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं लेकिन मैंने मेंशन किया था कि आज मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं शो में एक कलाकार हैं गाना गाते हैं एक्टिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो इनकी इनके साथ हम बात करेंगे मेरी इनकी इनके साथ दोस्ती काफ़ी पुरानी है बॉम्बे से दोस्त है और फिर यहाँ आके वापस मुलाकात हुई तो उसके पहले मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूँ इनका नाम है मेहुल समोया ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट सुन के ना सोचना नहीं कि बोरिंग है कोई भी एंगल से बोरिंग नहीं है ये इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की 1994 में ये बॉम्बे की पैदाइश है मुंबई अभी कहना पड़ेगा जब पैदा हुए थे तभी तो बॉम्बे था
13: तभी बॉम्बे
12: तो मुंबई की पैदाइश है और ऑस्ट्रेलिया में है 2007 से
13: जी
12: फिर इनके जैसे मैंने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी को छोड़ दें साइड पे तो उसके अलावा ये म्यूजिक में काफ़ी चाव रखते हैं थिएटर एक्टर हैं काफ़ी अच्छे एक्टर हैं मैंने रिसेंटली नहीं काफ़ी टाइम हो गया लेकिन इनका एक शो देख के मेरे को मतलब इनकी बड़ी फैन हो गई हूँ मैं इसके अलावा मेडिटेशन और फिल्मों का भी चाव है और ये आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हैं
13: जी
12: इनकी म्यूजिकल जर्नी है जो शुरू हुई एज अ बाथरूम सिंगर जो बहुत लोगों की शुरू होती है बाथरूम सिंगर लेकिन मैंने इनका गाना भी सुना हुआ है काफ़ी इनके शोज भी देखे हुए हैं बाथरूम सिंगर आप बोलोगे बिलीव नहीं करूँगी आप यू सीरियसली हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस एंड द वे यू सिंग एंड प्रेजेंट योर सॉन्ग्स इज अमेजिंग
13: नाइस थैंक यू
12: और इनका एसोसिएशन मैंने मेंशन किया था कि ये बहुत सारे चैरिटी शोज भी करते हैं इनके जो म्यूजिक शोज हैं काफ़ी चैरिटी शोज हैं और इनका जो एसोसिएशन है श्री ओम केयर के साथ है
13: जी
12: तो वेलकम थैंक यू इंडिया कनेक्ट में आने के लिए मेहुल आप कुछ कहना चाहेंगे जितना मैंने बात की मैंने आपके बारे में कहा इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे
13: नहीं हाँ आपने तो पूरी जन्म पत्रिका मेरी ले डाउन कर दी ऑलरेडी तो अब मेरे पास क्या बचा बोलने के लिए मगर वीना थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर अच्छा लग रहा है जैसे आपने कहा कि आपकी और मेरी मुलाकात तो वैसे यहाँ नहीं हुई है मुंबई में हुई थी
12: जी बिल्कुल
13: और इतने सालों के बाद भी हम दोस्त हैं हम मिलते रहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बार थोड़ा फॉर्मली बैठ के बातें करेंगे
12: हाँ लेकिन मैं तो हमेशा डॉली आपकी बीवी के साथ ज्यादा बात करती हूँ उनसे पहली मेरी जो आपके फैमिली के साथ आपके परिवार के साथ जो मुलाकात हुई इट वॉज थ्रू डॉली
13: बिल्कुल जी
12: तो फिर यू नो आपसे ज्यादा बात नहीं होती थी लेकिन ज्यादा ज्यादा बात नहीं होती थी हम आपके घर को हमारा अड्डा बना लेते थे यहाँ आने के बाद भी वो काफी बार हुआ था बट आप आज एक तो अगस्त का जो महीना होता है इन जनरल एक काफी इंटरेस्टिंग महीना होता है क्योंकि हमारे सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो सारी शुरू हो जाती हैं अगस्त में है ना तो ये आपके लिए ये महीना स्पेशली ये इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल तो इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले मेरे को पिछले हफ्ते हमने किशोर कुमार जी का बर्थडे मनाया था
13: जी।
12: और उसके बाद वो जब खत्म हुआ गानों का सिलसिला खत्म हुआ बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई आपने ये गाना नहीं बजाया आपने वो गाना नहीं बजाया आपने ये नहीं किया तो आज के एपिसोड में हम बहुत और थोड़े किशोर कुमार के गाने बजाने वाले हैं और एक पहला जो मेरा एक फेवरेट है मेरी बेटी का भी फेवरेट है और पिछली बार कहानी नानी आई थी उनका भी उनके बच्चों का भी फेवरेट है आज चल के तुझे मैं लेके चलूं तो वहां से शुरुआत करते हैं
13: बिल्कुल
2: Find it hard to tune in? Jump on the internet, stream

0: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं। आपके लिए कौन सा टीका सही है? इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें।
1: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
2: Station sponsor. Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you, 9604 9604.
0: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और आज मैं बातचीत कर रही हूँ मेहुल जी के साथ मेहुल सुमैया के साथ और हम जानना चाहते हैं कि आपका ये जो बाथरूम सिंगर से स्टेज सिंगर का जो यात्रा था वो कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ और हाउ डिड यू टेक इट अप एंड बिकम ए स्टेज परफॉर्मर
3: वीना बाथरूम में जब गाता था ना तो, तो खुद की आवाज़ अच्छी लगती थी यू नो तो फिर लगा कि चलो एक काम करते हैं बाथरूम से बाहर निकल के कहीं रूम में भी ट्राई करते हैं शायद यू नो एको के बिना कैसा लग रहा है तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे भी आवाज़ तो इतनी ख़राब भी नहीं आ रही फिर धीरे धीरे दोस्तों के साथ कैरियोके सेशंस वगैरह शुरू हुए और फिर बस रात रात बैठ गाते थे और मस्ती मजाक करते थे और सबको अच्छा भी लगता था फिर एक दिन हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं एक छोटी सी महफिल बनाते हैं और फिर महफिल बना के लोगों के सामने गाने गाए और फिर थोड़ी अप्रिसिएशन मिली फिर हौसला मिला फिर हौसले बढ़ते गए बुलंद होते गए और धीरे धीरे बस यह हुआ कि अभी इस अगस्त में हम ऑलमोस्ट हमारे 9th शो करेंगे
0: Wow, 9 shows. Wow, that is amazing achievement. क्योंकि सब लोग सोचते रह जाते हैं एक तो यू नो अरे हाँ ठीक है कोई कहता है कि आपकी आवाज अच्छी है तो फिर बाद में वो प्रैक्टिस करना लेकिन इसमें भी काफी मेहनत लगता है तो आपको अगर एक शो जो आप करते हैं कब कितना प्रैक्टिस करते हैं कितना लंबा प्रैक्टिस होता है ये आपका
3: देखिए जो हम शो कर रहे हैं इस महीने में 23rd को एक शो कर रहे हैं
0: हाँ जी
3: तो उस शो की तैयारियां मेरे ख्याल से बिगिनिंग ऑफ द ईयर से शुरू हुई हैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने तो हो ही गए
0: वाव ओके
3: सॉन्ग सिलेक्शन करो फिर म्यूजिशियंस के साथ स्ट्रक्चरिंग करो म्यूजिक का और फिर प्रैक्टिस करो बस चल ही रहे हैं तो इट इज अ फुल ऑन प्रोसेस
0: हाँ बिल्कुल और गाना तो एक ऑलमोस्ट एक क्या कहते हैं सिमिलर टू मेडिटेशन राइट
3: बिल्कुल
0: तो अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर से जो आवाज निकलती है वो सोलफुली निकलती है
3: बिल्कुल देख गाना ऐसी चीज है ना अगर आप एंजॉय नहीं करोगे ना तो आप यू विल नॉट साउंड गुड एज वेल
0: हाँ वो साज में भी आ जाता है ना वैसे अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो या फिर आपको कोई डाउट है तो गाने आपके गाने के अंदाज में ही समझ में आ जाता है कि यार ये तो शायद प्रैक्टिस नहीं हुई है
3: सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये होती है गाने की कि You have to learn to enjoy singing that song. अगर आप ही खुद सिंगिंग करते हुए एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि पब्लिक आपको एंजॉय करे?
0: That is very true. That is very true. हाँ
3: जी. So we have to get to that point of practice that when we hear ourselves sings, we feel, हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है.
0: और तो ये गाने के सफर में आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन था? या फिर आपका सबसे बड़ा प्रोत्साहन किसने दिया?
3: वो आई बी ऑनेस्ट मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक थी मेरी माँ तो जब हम गाना गाने की प्रैक्टिस करते थे ना आई यूज टू मेक श्योर कि मेरी माँ को सामने बिठा देता था मैं
0: वेरी गुड
3: हाँ और वो तो छोटे से छोटी गलतियों को पिकअप कर लेती थी
0: wow, okay.
3: हाँ गाने के बाद फिर पूछना है कि इसमें क्या गड़बड़ हुई तो अच्छा सा लिस्ट निकलता क्या गड़बड़ हुई बाकी लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक ही था अच्छा था
0: जनरली दोस्त यही बोलते हैं कि भाई हाँ कर लिया तुमने, वो जो वो हाँ जितना ड्रैग होता है ना उसके हिसाब से पता चल जाता है.
3: तो कभी कभी माँ को पूछने पे डर भी लगता था कि भाई पूछो कि नहीं, लंबी लिस्ट आएगी. हाँ. ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था. बट ऐसे क्रिटिक्स बहुत जरूरी होते हैं वैसे.
0: दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि जब तक अगर आपको पता नहीं है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको इम्प्रूव करना है नहीं करना है.
3: करेक्ट.
0: तो आप क्रिटिक्स की बात तब सुनोगे जब आपको इम्प्रूव करना है,
3: वरना तो बाकियों से पूछ लेंगे.
0: हाँ. वरना तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है. मैं गा रहा हूँ, आपको सुनना, सुनो नहीं सुनना मत सुनो. तो और आपका एक ग्रुप भी है, ये जो गाना गाने में गाने का जो बंदिश, पहले आप पहले आपका नाम बंदिश था.
3: हाँ जी, हाँ जी.
0: तो आपका वो ग्रुप भी है, तो उसके बारे में भी अगले इसमें बात करेंगे. और मैं तो सबसे ज्यादा ये जानना चाहती हूँ कि आपका एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ. क्योंकि मैं आपकी बड़ी फैन हूँ. तो आप भी बनेंगे इनके फैन अगर आप इनको देखेंगे एक्टिंग करते हुए. लेकिन उसके पहले अगला जो फरमाइश आया है किशोर कुमार जी का, किशोर और लता मंगेशकर का गाना है भीगी भीगी रातों में, एक बहुत ही प्यारा गाना है. तो वो सुनते हैं फिर वापस आते हैं.
3: बिल्कुल.

0: your home with hardwood floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hardwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
1: आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सर्वोत्तम सुरक्षा देती है। आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से इसकी बुकिंग करें। healthdirect.gov.au/nswfluvaccine पर जाएं।
2: Alive 90.5
3: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं बातचीत कर रही हूँ मेहुल सुमैया के साथ आज अभी हमने सुना इनकी इन पहले हमने सुना इनका यात्रा बाथरूम से लेके स्टेज तक का अब मुझे बताइए आपके टीम में कौन है आपका जो ग्रुप है जो गाने का ग्रुप है आपने कहा था महफिल जमाए थे आप रात को गाना गाते थे उनके साथ तो उनके बारे में थोड़ा बताएं
4: कुछ नहीं हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे सारे और यार दोस्त थे जो साथ में कैरियोके नाइट्स करते थे तो उसमें से हमारी चार फैमिलीज का एक ग्रुप बन गया उसमें से दो मेल सिंगर्स एक फीमेल सिंगर और एक कपल ऐसे थे जो बैक स्टेज प्रोडक्शन में हेल्प करते थे तो अच्छा सा एक फुल टीम बन गई एंड वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट शो
3: दैट्स वेरी गुड आई आल्सो स्टिल रिमेम्बर आपने एक फंडरेजर किया था जिसमें डॉली ने भी गाना गाया था आई थिंक पहली बार उन्होंने गाया गाया था मैंने कहा था भाई मुझे इतने टैलेंटेड लोग हैं आपके फैमिली में अब ये वाले जो आपने जो 23 अगस्त का बताया था उसमें डॉली आ रही है
4: हाँ बिल्कुल आ रही है डॉली के हमेशा एक स्पेशल अपीयरेंस होता है
3: जरूरी है
4: वो हाँ वो पूरे शो में एक ही गाना गाती है वैसे
3: और पूरे शो का ये चुरा लेके जाती है बट हाँ नहीं उनकी उनकी आवाज भी काफी बहुत अच्छी है तो आप उनसे ज्यादा गाना गवाएं मैं तो नहीं बोल सकती ज्यादा
4: मैं भी नहीं बोल सकता ज्यादा
3: अच्छा पता
4: बीवी के सामने वैसे ही कौन बोल सकता है
3: नहीं नहीं ऐसे भी क्या बात है मैं पूछूंगी वैसे इसके बाद मैंने जैसे कहा था कि आपने शुरुआत की फिर एक्टिंग ओके तो वो कैसे शुरू हुआ वो थिएटर में आपकी दिलचस्पी पहले से थी या फिर किसी ने यहाँ somebody played a catalyst and said कि चल भाई तू गाना तो गाता है स्टेज में भी इसमें ये भी कर ले
4: वैसे है ना वीना मेरे मुझे है ना मूवीज में बहुत इंटरेस्ट है और थिएटर देखने में बहुत इंटरेस्ट था ऑब्वियसली मैंने कभी स्टेज पे एक्टिंग तो करी नहीं थी मगर बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स तो ध्यान रहता है एक्टिंग के बारे में एंड ऑल दैट तो एक बार ऐसा हुआ कुछ साढ़े तीन साल पहले की बात है कि एक पहचान वाली डायरेक्टर थी शी वॉज डूइंग अ थिएटर कम्युनिटी थिएटर में एक प्ले कर रही थी और लास्ट मिनट पे एक एक्टर का ड्रॉप आउट हो गया था
3: ओके
4: एंड शी वॉज लुकिंग फॉर समवन टू रिप्लेस तो उसने पूछा भाई है तुझे इंटरेस्ट तो कर ले बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर समवन तो मैंने कहा चलो यार इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ट्राई कर लेते हैं तो जब वो किया ना तो मजा बड़ा आया हाँ और देन थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन वहां पे भी मिली फिर लगा कि नहीं यार ये तो समथिंग आई शुड परस्यू तो उसके बाद हमने फिर आई थिंक आई हैव डन नाउ 4 प्लेज आफ्टर दैट या
3: नो दैट इज रियली गुड 4 प्लेज इन द लास्ट हाउ मेनी इयर्स
4: एंड अबाउट 3.5 इयर्स
3: दैट इज जस्ट अमेजिंग ओके एंड अभी नया कुछ और आ रहा है समथिंग इज इन द पाइपलाइन
4: देयर इज समथिंग इन द पाइपलाइन इन अक्टूबर दिस ईयर
3: ओके तो याद रखेंगे हम अक्टूबर
4: बिल्कुल
3: तो एंड थिएटर में जैसे आप डिड यू गेट एनी ट्रेनिंग और वाज इट ऑल मोर देख के कि क्या कर रहे हैं लोग उनके उसके हिसाब से या डायरेक्टर ने कहा दो बार डांट दिया उसके बाद
4: नहीं आई डिडंट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर दैट मैटर नो ट्रेनिंग व्हाटसोएवर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस एज अ रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट बट सिंस आई हैव डन 4 प्लेज आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी यू नो कि भाई चार अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है प्ले डायरेक्ट करने का यू नो प्ले को प्रेजेंट करने का तो बस उनसे धीरे धीरे करके सीखते रहा अभी भी सीख ही रहे हैं वैसे But the good thing is, four plays I did with four alag-alag directors. So I got a lot to learn from them.
3: Oh, that is very nice. Hmm. You know, और ये ऐसे थोड़े थोड़े जो मुझे क्या लग, क्या अच्छा लगता है आपके आपके जो जर्नी में सुन के कि आपने एक एक तो आपका आप यू आर अ बिजनेस पर्सन यू आर डूइंग सीए एंड अकाउंटिंग आपका एक तरफ चल ही रहा है उसके अलावा यू आर गिविंग स्पेस फॉर आर्ट एंड कल्चर टू ग्रो इन योर लाइफ विच इज जस्ट अमेजिंग बहुत अच्छी बात है ये
4: नहीं वीना ये तो बहुत ही जरूरी है बिकॉज वो बैलेंस करना पड़ता है ना लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो हम एक और बैलेंस करके वापस आते हैं अगला गाना सुन के जहाँ किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर का दूसरा गाना है और इसमें मैंने सुना था कि उन्होंने लास्ट में एक अपना खुद का पैसे देने के बारे में बात गाने में ऐड कर दिया था
4: अच्छा

0: Alive 90.5.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
3: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care. Care that feels like family. Station sponsor.
0: Alive 90.5.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में. मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं बात कर रही हूँ मेहुल सुमाया के साथ और हम इनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे. सिंगिंग, फिर अभी थिएटर, और इन्होंने कहा है कि ये लोग ये चार अलग अलग डायरेक्टर से डांट भी सुन चुके हैं और उनके और इनके लिए एक्टिंग भी कर चुके हैं. जो मैंने देखा था वो आपका वो कौन सा थर्ड प्रोडक्शन था या फोर्थ?
5: कौन सा देखा?
4: माहिम जंक्शन.
5: हाँ, माहिम जंक्शन वाज एक्चुअली माय सेकंड.
4: वाज इट सेकंड?
5: इट वाज द सेकंड.
4: माय गॉड, माहिम जंक्शन में आप माहिम जंक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, आपका जो कैरेक्टर था उसके बारे में? बिकॉज दैट रियली फ्लोर्ड मी व्हेन यू केम ऑन स्टेज. आई वाज लाइक, दैट इज मेहुल, रियली.
5: वैसे जो जो एक्सप्रेशन आपको अभी आया ना, वो मुझे आया था जब डायरेक्टर ने कहा था ये रोल तुझे करना पड़ेगा. मुझे याद है आज भी, वो कास्टिंग का डे, हम सारे चक्री लगा के बैठे थे रूम में और डायरेक्टर ने रोल बांट रही थी उस दिन. और वन ऑफ द कैरेक्टर वाज अ ट्रांसजेंडर and Mime Junction was a spoof of the 1970s ki Bollywood. Bombay mein.
4: Yeah.
5: Obviously.
4: Yeah.
5: Aur usme transgender ka role tha. Aur casually director ne keh diya, Mehul, ye aapko karna hai. Ab main, waise bhi mera to second production tha, first production mein to hardly I had done anything.
4: Mm-hmm.
5: Aur maine kaha, nahi, main. Bahut resist kiya maine. और फिर डायरेक्टर ने कहा देखो, दिस इज द चैलेंजिंग थिंग अबाउट द रोल विल मेक इट एक्साइटिंग.
4: नो, इट वाज, आई मीन द वे यू डिड दैट एक्टिंग, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. अ रेंज ऑफ यू नो व्हाट यू कुड डू, इट केम आउट सो ब्यूटिफुली इन दैट कैरेक्टर, वे यू प्रेजेंटेड दैट कैरेक्टर. यस, I was like, oh, for, it took me a while to say that, achha, this is Mehul, really, wala thing, to then completely forget that you're Mehul and you went into that character so beautifully.
5: हाँ जी, बिल्कुल. मैंने बहुत सीखा उस रोल में भी ना, मैंने सीख लिया कि साड़ी कैसे बांधते हैं.
4: ये अच्छी सीख है.
5: अभी डॉली को हेल्प करता हूँ कभी कभी.
4: नहीं, अभी आपको पता है ना कि व्हाई विमेन गेट डिलेड व्हेन दे हैव टू वेयर अ साड़ी.
5: हाँ जी,
4: है ना. तो ये अच्छी सीख है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये अच्छी सीख है.
5: उस प्ले में आई हैड 4 साड़ी चेंजेस.
4: वाओ,
5: इंक्लूडिंग द ब्लाउज.
4: नो, सो नाउ ही डजंट कंप्लेन अबाउट डॉली टेकिंग मोर टाइम टू गेट रेडी.
5: बिल्कुल.
4: So that is a good outcome, even for Dolly, hai na?
5: Bilkul. Now I know the plight of a woman.
4: Yes, a part of the plight. Chalo, theek hai. Okay. I'll give it to you. So, humne pehle mention kiya tha ki aapka jo show aa raha hai 23rd ko, jo Shri Om ke liye aap ek fundraiser kar rahe hain, uske bare mein thoda bataye.
5: This show is called Leher.
4: Mm-hmm.
5: Aur ye show hum kar rahe hain Castle Hill mein, Pioneer Theatre mein,
4: mm-hmm.
5: which is a Sunday.
4: Mm-hmm.
5: और आज तक हमने जितने भी शोज किए हैं, खैर, वी हैव ऑलरेडी एसोसिएटेड इट विद चैरिटी, फॉर चैरिटी, फॉर श्री होम केयर. और ये शो भी श्री होम केयर के चैरिटी के लिए हम कर रहे हैं.
4: mm-hmm.
5: इस शो का एक स्पेसिफिक थीम है वेर वी आर गिविंग स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हम हाईलाइट करेंगे कि हाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन यूज्ड इन बॉलीवुड म्यूजिक.
4: ओके ओके.
5: फोकस सिंगर्स से ज्यादा म्यूजिशियंस पे होने वाला है इस टाइम.
4: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो म्यूजिक पे इतना ज्यादा फोकस जनरली होता नहीं है. जनरली होता है कि सिंगर्स ये कर रहे हैं या फिर इवन प्लेबैक सिंगर्स,
5: करेक्ट,
4: यू नो, उन पे ज्यादा फोकस होता है. दिस ये आइडिया आया कहां से?
5: क्योंकि आई एम फैसिनेटेड विद म्यूजिशियन विद इंस्ट्रूमेंट्स, तो आई लर्न सम इंस्ट्रूमेंट्स मायसेल्फ. आई प्ले द पियानो, आई प्ले द ड्रम, सो आई डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. जो मेरी खुद की फैसिनेशन है द साउंड्स दैट दीस म्यूजिशियंस कैन प्रोड्यूस, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली क्रिएट द मैजिक दैट वी हियर इन दीस साउंड्स. मे बी यू नो, आप जब नेक्स्ट सॉन्ग बजाएंगे तो मैं आपके ऑडियंस से भी कहूंगा इस टाइम ना थोड़ा फोकस कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस गाने में.
4: बिल्कुल, और हिंदी म्यूजिक में तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी यूज किए गए हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी यूज किए गए हैं म्यूजिक को ये करने के लिए. लेकिन अगला गाना जो भी आने वाला है ये आपने चूज किया है सागर मूवी से.
5: हाँ जी.
4: तो किशोर कुमार का ये गाना सुन के वापस आते हैं.

0: great music.
1: On your sound, your community.
0: Alive 90.5.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
4: टीकाकरण खसरे, काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करते हैं। अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चों को समय अनुसार सभी टीके लग गए हैं।
1: Alive 90.5.
5: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं अब तक बातचीत कर रही थी मेहुल सुमाया के साथ और हमने काफ़ी मेहुल के रंग देखे गाने थिएटर और अभी एक इनका शो आ रहा है 23 अगस्त को वैसे कह रहे थे कि वो सोल्ड आउट हो चुका है
6: बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुका है वी सोल्ड इट आउट 3 वीक्स प्रायर टू द शो
5: दैट इज अमेजिंग दैट्स व्हाट इट सेज कि ये आई एम वेरी श्योर दीज आर पीपल हु हैव ऑलरेडी हर्ड यू And your team, because मैंने तो बहुत पहले मेरी फ्रेंड को बोला था कि साथ में बुक करने वाली थी तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई बुक कर दे तो आई एम सो ग्लैड धन्यवाद आपका कि आप सैटरडे को यहाँ आए मेरे साथ आपने बातचीत की और जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया कनेक्ट के लिसनर्स से
6: नहीं थैंक यू वीना पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और बड़े दिनों के बाद हम बैठे और एक दूसरे सामने सामने बातें की बस आई एम लाइकिंग द जॉब दैट यू आर डूइंग कम्युनिटी के लिए और आई होप वी कैन सिट एंड हैव अ चैट अगेन समडे
5: डेफिनेटली अभी तो आपने कह दिया कि हम लोग बीच में भी ये भी बात कर रहे थे जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे मैंने कहा कि वो तो एक अलग एपिसोड ही है क्योंकि जितने सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड में उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं कभी तो ऐसे आम चलती फलती चीजें यूज किए हैं
6: बिल्कुल
5: तो इसके बारे में एक्चुअली मैं आपसे भी बात करना क्योंकि आपकी दिलचस्पी भी है तो आप एक बार वापस आए हमारे शो में और इसके बारे में हम थोड़ा और बातचीत करें और स्पेशली वो गाने बजा के सुनाए लोगों को कि भाई इसमें कौन सा और गेस करवाएं कि भाई क्या यूज किया हुआ है
6: लव टू डू दैट लव टू डू दैट इट्स अ पैशनेट चीज है मेरी भी
5: हाँ बिल्कुल तो और मुझे ये आपकी ना ये बात जब मैंने पहले भी बताया था कि आपकी काम एक जगह पे है और आपने ये जो दूसरा साइड लिया है आपका एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए पहले तो और द कम्युनिटी सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम योर पैशन है ना आपके गाने और थिएटर की चाव से ये कम्युनिटी को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जैसे श्री ओम के लिए आप फंड रेजर कर रहे हैं आई थिंक श्री ओम के लिए जो जो भी आपने जो शो किए हैं सारे फंड रेजर्स थे
6: हाँ जी बिल्कुल
5: है ना तो ये आप दिस इज ग्रेट फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल है ना तो जो काम काम काम में हम लगे रहते हैं हमेशा इतना पैसा कमा के जाएंगे कहाँ है ना तो ये जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आप कर रहे हैं विच इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इतना पैसा कमा के जाएंगे कहाँ है ना तो ये जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आप कर रहे हैं विच इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू पिक इट अप एंड से

0: ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच अगेन यहाँ आके आपका वक्त बिताने के लिए. और जाने से पहले एक चीज मैं सबको याद दिला दूं, अगले हफ्ते हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 80th इंडिपेंडेंस है, 80 साल हमने कंप्लीट किया है. तो आई डोंट नो अगर आप जा रहे हैं मेहुल, लेकिन 16 तारीख को इंडियन कॉन्सुलेट ने एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ICC में. तो 12 बजे के बाद है, स्टार्ट्स एट 12:30. तो अगर आपने अभी तक, फ्री इवेंट है, अगर आपने अभी तक अपना टिकट बुक नहीं किया है ज़रूर बुक करें और जाके हमारे 80 साल के सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इट इज़ अ प्राउड मोमेंट.
1: डेफिनेटली प्राउड.
0: और यहाँ तो इंडियंस इतनी मतलब सिडनी में हमारे, मेरे को लगता है कि मैंने सिडनी में इतने सारे इंडियन इवेंट्स देखती हूँ, मैं सर चकरा जाता कि भाई किसके लिए जाऊँ. तो ज़रूर जाएँ इस 80th सेलिब्रेशन के लिए. और एक और बिग थैंक यू टू अ लेजेंड लाइक किशोर कुमार, उनकी वजह से आज भी हम गाए कुछ गानों को एंजॉय कर रहे हैं. और ये जो लास्ट गाना मैं बजा रही हूँ, ये एक बहुत फेवरेट गाना है, मेरे बचपन का फेवरेट गाना है. और मैं और मेरे भाई इसमें ना, वी यूज टू प्ले ईच अदर्स रोल, एक किशोर कुमार, एक मनादे वाला, एक महमूद वाला, हम लोग करते थे. और मैंने एक मनादे का इंटरव्यू सुना था बहुत पहले, कि ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने डायरेक्टर का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि इतना मस्ती करते थे उस स्टूडियो में. तो ऐसे गाने हम तक लेके आने के लिए, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच किशोर जी, आपकी आत्मा सुन रही हो तो. बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इंडिया कनेक्ट, एंड एन्जॉय, एंड सी यू नेक्स्ट वीक.